सरगम के सभी श्रोताओं को इंदु का नमस्कार और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आज कोई थीम नहीं है, मैं आप लोगों को जस्ट कुछ पुराने गाने आधे घंटे में सुनाऊंगी, सदाबहार पुराने गाने पुरानी फिल्मों के, और 10 बजे के बाद आपकी फरमाइशें पूरी होंगी। एक बार आप सभी को मैं हैप्पी नवरात्रि विश करना चाहूंगी। आज से पहला दिन है, नवरात्रि शुरू हो रही है। कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार होता है, एसोसिएट विद इट गोज बैक टू माय मम। कोई भी चीज होती है, मैं हमेशा याद करती हूँ कि मम क्या करती थी उस समय पे। इतने साल हो गए हैं उनको गए हुए, इतने साल हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, फिर भी वो एक चीज हमेशा पहले दिन जरूर याद आती है कि आज के दिन मम्मी क्या बनाती थी। बिकॉज शी वॉज एन एक्सेलेंट कुक एंड शी लव टू कुक फॉर अर फैमिली। आप लोग क्या स्पेशल करते हैं नवरात्रि में, अगर मौका लगे जरूर बताइएगा। और मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने त्यौहार थे, मामा कितना कितना कुछ अलग अलग बनाती थी। आई हैव टू राइट डाउन एंड टेल माई चिल्ड्रन की वॉट डिड नानी डू फॉर दम। सो चलिए आप लोग अपने इस नवरात्रि के फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करिएगा। गाने जरूर चलाऊंगी आगे चल के, लेकिन अभी समय है पुराने गानों का। और ये जो गाने हैं आप सुन रहे हैं, आज जो अभी आपने सुना रही थी केएल सहगल प्रेसिडेंट से, अगला जो गाना है वो है तलत महमूद जी की आवाज में, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। इसके बाद ये पुराने गाने चलते रहेंगे, कुछ हंसी वाले कुछ थोड़े से उदास भी। पिछले हफ्ते किसी ने कहा था कि आप हमेशा हंसने वाले और बहुत पैपी सॉन्ग सुनाती हैं, थोड़ा सा उदास सॉन्ग भी कोई सुनाइए। कमिंग अप फॉर यू दिस वन इज द वन। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप फोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150।

आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है रविवार की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। प्रोग्राम के इस भाग में आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों के कुछ गीत एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीवन वेरी हैप्पी थैंक्स गिविंग टू आई कैंट बिलीव आई फॉरगॉट टू मेंशन आई सेड हैप्पी नवरात्रि बट आई डिडंट से हैप्पी थैंक्स गिविंग एज वेल। थैंक यू सुवैन फॉर कॉलिंग इन एंड विशिंग हैप्पी थैंक्स गिविंग। सो चलिए ये जो आपके जो आज के गाने हैं लेट मी टेल यू आज कोई थीम नहीं है लेकिन थीम ये रहेगी कि थैंक्स गिविंग है नवरात्रि है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग टू सेलिब्रिटीज क्योंकि गाने मैं चलाती हूँ तो उनके गाने हैं अमिताभ बच्चन और रेखा उनके जन्मदिन एक कल था।

एक का आज है. सो उन दोनों के जन्मदिन भी उनके ऊपर कुछ गाने आई वुड लाइक टू प्ले. सो आप अपनी पसंद का गीत बताइए, एक से ज्यादा गाने भी बता सकते हैं. आई वुड बी हैप्पी टू प्ले, यू नो, स्टे हियर अंटिल 12. सो चलिए, यही आज की थीम है, थैंक्स गिविंग, नवरात्रि, और साथ में अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों के कुछ गीत. अगला गाना है शमशाद बेगम जी की आवाज में, फिल्म CID, पूछ मेरा क्या नाम रे. नंबर आपको पता ही है, 5198074150.

हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:04 हुए हैं और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जो प्रसारित होता है हर रविवार की सुबह 9:30 से लेकर 12:00 तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी थैंक्सगिविंग। जो नवरात्रि हैं बहुत ही स्पेशल टाइम है सभी के लिए, पूरा हफ्ता क्या यहाँ से एक तरह से शुरू होगा सेलिब्रेशन और जब तक दिवाली चलेगी तब तक ये चलेगा। आई लव टू सेलिब्रेट नॉट इन ए बिग वे एट होम बट आई लव द फील ऑफ कि फेस्टिव सीजन चल रहा है। और अगर आप कभी कहीं बाहर मिलो या लोग बाग मैसेजेस भेज रहे हैं, आई रियली एंजॉय दैट पार्ट। जब इंडिया में थे एंड दैट वाज व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, लव्ड इट एवरी मिनट ऑफ इट। सो यहाँ आके थोड़ा सा हम लोग कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया है लेकिन स्टिल आई लव दिस सीजन। एक तो मौसम बदल रहा है, थोड़ा मौसम चेंज होता है, थोड़ा फेस्टिविटीज शुरू होती हैं, फ्रेंड्स भी ज्यादा मिलते हैं, दैट्स अनदर थिंग। सो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी थैंक्सगिविंग एज वेल। आई हैव लॉट टू थैंक फॉर एंड लेट्स थिंक अबाउट इट कि क्या क्या, लेट मी थिंक अबाउट एज आई एम डूइंग दिस शो, एंड ऑफ द शो लेट मी यू नो टेल यू कि क्या क्या, किस किस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूं। वैसे तो सभी चीजों के लिए बट लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। प्रोग्राम के इस भाग में आपने जिन गानों को सुना उन्हें मैंने चुना था फिल्म प्रेसिडेंट, दाग, नागिन, सीआईडी, शमा, कोहरा, शिकारी और 20 साल बाद से। और जो इसके सिंगर्स थे वो थे केएल सहगल, तलत महमूद, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, हेमंत कुमार और उषा मंगेशकर। एक गाना शायद ज्यादा बज गया 10:00 के बाद। होता क्या है कई बार अगर आप फोन करते हैं एंड आई मिस दैट 3 seconds चेंज द सॉन्ग देन आई लेट इट कंटिन्यू विद वॉट एवर आई वॉज प्लेइंग। सो दैट्स वॉट हैपन। 4 मिनट ऊपर लिए। अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे आज के स्पॉन्सर हैं ओंकार फूड्स, साथ में उनकी 3 लोकेशन है किचनो वाटरलू में, साथ में है आईबी ऑप्टिकल्स और उनका और एक और स्पॉन्सर जो है वो है इंडियन स्पाइस। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे चल के बताऊंगी क्योंकि इस टाइम मैं काफी बोल चुकी हूँ एंड आई थिंक यू आर वंडरिंग व्हाट इज द नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग अप। सो चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं। अगला गाना है सेलिब्रेटिंग नवरात्रि एंड थैंक्सगिविंग, नगाड़ा ढोल सॉन्ग, फिल्म रामलीला, संजय लीला बंसाली। व्हेन ही मेक्स अ फिल्म ही मेक्स इट ओवर द टॉप, यू नो सब कुछ होता है उसमें, कलर भी होता है, म्यूजिक भी होता है उसमें, डांस भी होता है। इट्स अ फुल प्रोडक्शन, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल मूवी। सो ये जो गाना है नगाड़े संग ढोल बाजे, लेट्स ऑल एंजॉय दैट। और इसके बाद आपकी फरमाइशें शुरू होंगी। सो इफ यू विश टू हियर अ सॉन्ग, हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, 5198074150।

और अब चलते हैं आज की पहली फरमाइश की तरफ. आज की पहली फरमाइश एक्चुअली इट केम यस्टरडे. माही मैसेज यस्टरडे सेइंग माय मम शेयर्स बर्थडे विद अमिताभ बच्चन जी, विच इज अमिताभ बच्चन बर्थडे इज टुडे. सो कैन यू जस्ट प्ले अ सॉन्ग विच इज हर फेवरेट, हर मदर्स फेवरेट सॉन्ग. सो माही, हैप्पी बर्थडे टू मॉम फ्रॉम माही एंड फैमिली फ्रेंड्स. एंड दे रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग फ्रॉम कभी कभी, सिंगर इज मुकेश एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल सॉन्ग. मैं पल दो पल का शायर हूँ. माही, टेल योर मॉम दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल एंड हैप्पी बर्थडे टू यू.

ये जो गाना भी आपने सुना, इसे मैंने चुना था फिल्म रेफ्यूजी से. दिस वॉज द मूवी वेयर अभिषेक बच्चन एंड करीना कपूर स्टार्टेड देयर फिल्मी करियर. मूवी आई वुडंट नो मच, आई वॉच इट लॉन्ग बैक एंड आई कैंट रियली रिमेंबर मच अबाउट इट, बट आई लव द सॉन्ग्स. सोनू निगम की आवाज़ और अलका याग्निक जी की आवाज़ एक साथ मैजिक लगती है. बहुत अच्छे गाने हैं इस फिल्म के, सो आई थॉरली इन्जॉयड दिस वन. हो सकता है अगर याद रहे तो अगले हफ्ते एक गाना और इसी फिल्म से चलाऊंगी शुरू में. लेकिन अब चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ. एंड द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज एक्चुअली नेक्स्ट नॉट रिक्वेस्ट, दे रिमाइंडेड मी इज अ हैप्पी थैंक्सगिविंग. इट्स फॉर सुवेन एंड मार्क. हैप्पी थैंक्सगिविंग टू यू एंड योर फैमिली. आई एम प्लेइंग अ सॉन्ग, शी सेड सरप्राइज मी. सुवेन, हियर इज अ सॉन्ग. वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई आई पिक दिस सॉन्ग. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. वॉइस इज आर तुलसी कुमार, राहत फतेह अली खान. सो लेट्स ऑल एन्जॉय एंड हैप्पी थैंक्सगिविंग टू यू ऑल.

और 10:30 बजने वाले हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में. समय है एक बार फिर से आपको अपना आईडी देने का, साथ में स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करने का. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हर रविवार को 9:30 से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से. नंबर है 5198074150. अगर आप बात करना चाहें, सजेशन देना चाहें, कोई फरमाइश करना चाहें, आज का जो स्पेशल है अब जो है वो है अमिताभ बच्चन और रेखा. रेखा जी का कल बर्थडे था, आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है. आप कोई गाना सुनना चाहें जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपके लिए फरमाइशें मेरे पास हैं ही, गाने सबके चलाती रहूंगी. अपने स्पॉन्सर्स का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी. एंड आई एम ग्रेटफुल, यू नो वी टॉक्ड अबाउट की थैंक्स गिविंग, व्हाट एम आई ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू हैव दी स्पॉन्सर्स. पहले तो आप लिसनर्स, ताकि मैं शो को इसको चला सकूं. दिस द स्पॉन्सर्स जिनकी मदद से मैं ये शो आप तक हर संडे को ला सकती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद ओंकार फूड्स. दे हैव 3 लोकेशंस टू सर्व यू इन किचनर वाटरलू. 101 हेजलग्रैंड ड्राइव इन किचनर, 500 ग्लेन फॉरेस्ट बुलेवार्ड इन वाटरलू, एंड 1541 हाईलैंड रोड वेस्ट इन किचनर. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इनके यहाँ आपको खाने का सामान मिलेगा, फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोड्यूस. और अब फेस्टिवल सीजन है, एवरी थिंग यू नीड फॉर दैट इज अवेलेबल. At the same time, they also have freshly cooked meals for you too. So that's Onkar Foods and 3 locations for you. अगला जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो है आई व्यू ऑप्टिकल्स. इनकी लोकेशन है 90 वीबर स्ट्रीट, लिंकन प्लाजा. इस शो के साथ सबसे लंबा समय से आई व्यू ऑप्टिकल्स जुड़े हुए हैं. इनके यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के डिजाइनर ब्रांड्स, चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस मिलेंगे. बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी सर्विस है. आई कैंट से मच मोर, आई एम अ क्लाइंट देयर एज वेल. उनकी लोकेशन है 90 वीवर स्ट्रीट, लिंकन प्लाजा, वाटरलू. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. नंबर है 5197252122. कॉन्टैक्ट अमीन और शमीरा, एंड ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू गो देयर. अगले हमारे स्पॉन्सर हैं इंडियन स्पाइस. वैसे तो वो उनके यहाँ हर तरह का खाना आपको मिलेगा, बट दे स्पेशलाइज इन साउथ इंडियन मील्स. एंड दे से साउथ इंडियन डोसा इज नॉट जस्ट अ मील, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. सिंपल इंग्रेडिएंट्स, टाइम ऑनर्ड मेथड्स, एंड टेस्ट दैट कैरीज जनरेशंस. दैट्स अ मोटो. देयर नंबर इज 2263369959. तो ये तो थे हमारे आज के स्पॉन्सर. चलिए एक गाना अमिताभ बच्चन जी की फिल्म से मैं चलाऊंगी. मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि उनका इतना लंबा करियर है और इतने अच्छे उनके गाने रहे हैं फिल्मों में, मैं कहाँ से शुरू करूं. लेकिन लेट मी स्टार्ट विद वन सॉन्ग फिल्म अभिमान से. आई रिमेम्बर वॉचिंग दिस मूवी व्हेन आई वॉज, आई थिंक आई हैडन गॉन टू ग्रेड 10 येट, बट या आई रिमेम्बर वॉचिंग इट. आई वॉज इन द ग्रेड स्कूल और अपनी सिस्टर के साथ, माई ओल्डर सिस्टर, शी टुक मी विद हर टू दिस मूवी. सो एक गाना आपके लिए फिल्म अभिमान से, तेरी बिंदिया रे. आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की. म्यूजिक है SD बर्मन का.

और अब चलते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है कोकी की और फिल्म का नाम है भाभी। आवाज है मोहम्मद रफी जी की और गाना है चल उड़ जा रे पंछी। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही डीप आवाज है मोहम्मद रफी जी की। लेट्स ऑल एंजॉय दिस सॉन्ग।

एंड माफ कीजिएगा, आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल इशू हियर इस गाने के साथ. लेट मी सी इफ आई कैन ट्राई इट अगेन. एक बार बंद करके दोबारा चलाने की कोशिश करती हूँ.

और अगली फरमाइश है ऑल द वे फ्रॉम मिसेस सागा सरोज चोपड़ा दीदी की. एंड दीदी आई एम थैंकफुल टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली व्हेन वी मूव टू कैनेडा. आई कैंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी इयर्स अगो वाज दैट. दे आर द वन हु केप्ट अस विद अस देयर फैमिली. सो थैंक यू सो मच. दीदी रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग फ्रॉम छड़ी रे छड़ी मौसम. ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई एंजॉय इट. दी दिस मूवी वॉज स्टार ऑफ इसके जो स्टार थे वो थे संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर. शर्मिला टैगोर की इसमें डबल रोल था, मदर एंड अ डॉटर एज वेल. सो दीदी बहुत ही अच्छा गाना आपने चुना है, मुझे बेहद पसंद है आपके लिए. थैंक यू सो मच.

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ. द नेक्स्ट रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम शीला एंड आई ऑलमोस्ट प्लेड दिस सॉन्ग इन द फर्स्ट हाफ पार्ट एंड इट्स अमेजिंग दैट शी रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम जब प्यार किसी से होता है, मोहम्मद रफी जी की आवाज़ है और एज आई सेड बहुत ही खूबसूरत गाना. आई ऑलमोस्ट प्लेड इट शीला, सो हियर इट इज़ फॉर यू एंड हैप्पी थैंक्स गिविंग टू यू एंड माइकल. लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग टुगेदर.

आज तो आप लिसनर्स ने कमाल ही कर दिया, एक के बाद खूबसूरत गाने जो आपने पिक किए हैं, बहुत दिनों से चले नहीं थे और मेरी पसंद के सारे गाने चल रहे हैं. आई एम रियली एंजॉयिंग इट थॉरली एंड द नेक्स्ट वन इज द सेम, आई लव दिस सॉन्ग. अगली जो फरमाइश है वो है रूपी बेंस की और उन्होंने फरमाइश करी है फिल्म आपकी कसम के इस गीत की आवाज़ है किशोर कुमार की. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते. एब्सोल्युटली ट्रू एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग. इससे पहले कि मैं रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम करती थी, उससे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट आई बीन होस्टिंग इट अबाउट 34 ईयर्स, उससे पहले किशोर कुमार यूज टू बी वन एंड ओनली फेवरेट सिंगर आई हैड. एंड देन एज आई वेंट थ्रू एंड आई प्लेड मोर एंड मोर सॉन्ग्स एंड डिस्कवर्ड मोर एंड मोर सिंगर्स, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एवरीवन एंड स्टार्टेड लविंग. बट ये जो गाना है किशोर कुमार जी का, स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. थैंक यू रूपी फॉर रिक्वेस्टिंग इट. बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे एंड दिस इज एब्सोल्युटली द जेम.

और हमारे स्टूडियो की में घड़ी में ठीक क्या ना बजने वाले हैं, बजे नहीं है, एक मिनट बचता है। और अभी आप समय एक बार फिर से अपने स्टूडियो की आईडी देने का, अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करने का। आप सुनते हैं इस प्रोग्राम को हर संडे की सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 102.7 रेडियो वाटरलू से। और आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5198074150। हमारे आज के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हैं ओंकार फूड्स, इनकी 3 लोकेशन है किचनर वाटरलू में, 101 हैजलगन ड्राइव किचनर, 500 ग्लेन फॉरेस्ट बुलेवार्ड वाटरलू and 1541 Highland Road West in Kitchener. And there you can find freshly cooked meals, produce, everyday cooking essentials, and right now Navratris are on, so there you can find all your puja essentials as well. Next sponsor, the IBU Opticals. They are located at 90 Weber Street, Lincoln Plaza. You can reach Amin or Shamira at 519-725-2122. That's your one-stop shop for great selection in eyewear, eyeglasses, contact lenses, and sunglasses. And the next is Indian Spice, located at 373 Bridge Street in Waterloo. For best South Indian meal, you can go there. And their number is 226-336-9959. तो ये तो थे हमारे आज के स्पॉन्सर्स। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अमिताभ बच्चन एंड रेखा, उनके जन्मदिन, यस्टरडे वाज रेखाज बर्थडे, सो लेट मी प्ले अ सॉन्ग फिल्म उमराव जान से, एंड आई थॉट शी लुक द बेस्ट। वैसे तो घर जो मूवी थी वो दैट वाज हर हाईलाइट ऑफ हर करियर, सो इज खूबसूरत, पर इसके जो इसमें थी आई थिंक शी वॉज अ न्यू रेखा इन दिस उमराव जान। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, गाने बहुत अच्छे थे। मेरा फेवरेट जो है वो तलत अजीज जी की आवाज़ में है, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है मुझे। सम अदर डे आई विल प्ले दैट फॉर यू, बट राइट नाउ सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग रेखाज बर्थडे, लेट्स प्ले दिस दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। आशा भोसले जी की आवाज़ है और 1981 में ये फिल्म आई थी। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम उमराव जान।

And that is right. You can मैं आपके लिए जो गाना चलाने जा रही हूँ वो है सुषमा जोशी जी की फरमाइश, और फिल्म है आमने सामने, कभी रात दिन हम दूर थे, अब रात दिन का ये साथ है। सुषमा जी, बहुत ही दिनों में ये गाना फरमाइश आई है, बहुत अच्छा गाना है। लेट्स ऑल एंजॉय इट।

जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे गाना बीच में काटना पड़ेगा एंड राइट आई डिडंट रियलाइज कि समय क्या हुआ है. आई जस्ट काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम. मेरे पास एक आखिरी फरमाइश है. गाने की फरमाइश थी मेरे अंगने में एंड एज आई सेड आई हैव बीन हैविंग ट्रबल विद द प्लेइंग सर्टन सॉन्ग्स. सो राकेश शर्मा भाई साहब की पसंद पर उस गाने की जगह मैं चला रही हूँ. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. आवाज़ है मुकेश की और कभी कभी फिल्म आई मीन एवरीबडी नोज अबाउट इट. सो लेट्स ऑल इन्जॉय इट एंड थैंक यू भाई साहब एंड होपफुली आई कैन प्ले योर सॉन्ग नेक्स्ट टाइम.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।